0: പാലക്കാട് തൃത്താല കുഴൽമന്ദം MRSകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം 28 നടത്താനിരുന്ന അഭിമുഖം ബക്രീദ് അവധി പ്രമാണിച്ച് മെയ് 29 മാറ്റിയതായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ആകാശവാണി 102.7 മഞ്ചേരി FM. ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം മിഡ് ഡേ ന്യൂസ്.
1: Afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi, says India and Cyprus aim to double investment flows in next 5 years. Election Commission announces biennial elections for 24 Rajya Sabha seats from 10 states on the 18th of next month. Supreme Court to hear plea against CBSE's three-language compulsory study for Class 9 students from July the 1st. IMD issues red alert for severe heat wave over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad this evening. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus Nikos Christodoulidis on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. In his joint statement, Prime Minister Narendra Modi said the friendship between India and Cyprus is not only strong but also future-oriented. He said over the past decade, investment from Cyprus to India has nearly doubled. He said with the India-European Union Free Trade Agreement, numerous new possibilities have emerged and the trust between the two countries has increased. Mr. Modi added that India and Cyprus aim to double investment flows again in the next 5 years.
2: भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं. इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं.
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड ड्यूरिंग द मीटिंग दे ऑल्सो डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज.
2: भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी.
1: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year.
3: I feel exceptionally honored and privileged to be in Delhi for this state visit, and we stand together in marking another milestone.

0: हैं। कुछ लोग स्कूटर पर और साइकिल पर और कुछ लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलने वाले आदमी का कपड़ा और मुख भाव पर ध्यान दो, कैसा लगता है?
1: गरीब लगता है।
0: ठीक है, बहुत गरीब लगता है। कैसे?
1: बहुत सादा कपड़ा पहना है।
0: ठीक है, वो सादा कपड़ा पहना है और क्या दिखता है श्रुति?
1: उसके पैरों में सादा चप्पल है।
0: ठीक है, उसका मुख भाव कैसा है?
1: दीन भाव है।
0: उत्तम, उसके मुख में दीन भाव है, दैन्य भाव है। उसके दाएं हाथ में देखो एक फावड़ा है, फावड़ा माने मनबट्टी, और बाएं हाथ में दोपहर का खाना भी है, खाने का बर्तन है, सिर पर पगड़ी भी पहना है। उसका रूप और भाव देखकर वह एक श्रमिक या खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर जैसा लगता है ना?
1: हाँ जी, ऐसा लगता है।
0: अब कार में बैठने वाले आदमी का रूप और भाव पर ध्यान दे। पहले हमने पैदल चलने वाले व्यक्ति का रूप और भाव देखा, अब तुम कार में बैठने वाले आदमी का रूप और भाव पर ध्यान दे।
1: जी
0: वो एक आलीशान कार है ना, आडंबर कार है। उस कार के पीछे वाली सीट पर एक आदमी बैठता है, वह किसकी ओर देखता है सुधी?
1: वह मस्तूर की तरफ देखता है।
0: ठीक है, उसके मुख भाव पर ध्यान दो, क्या दीन भाव है?
1: नहीं, एक हासी भाव है।
0: देखो, कार में चलने वाला वह आदमी पैदल चलने वाले आदमी की ओर हीन भाव से देखता है, जैसे वह मुझसे बहुत ही नीचे हैं, ऐसा उसे दिखता है। देखो बेचो, अब तक हम क्या कर रहे थे? पाठ
1: चित्र पर चर्चा कर रहे थे।
0: भाग के प्रथम पृष्ठ पर एक चित्र था, चित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, चित्र का विवरण कर रहे थे, अर्थात चित्र वाचन कर रहे थे। क्या कर रहे थे?
1: चित्र वाचन कर रहे थे।
0: अच्छा, देखो अब गृह कार्य के रूप में एक गतिविधि देना चाहूंगा, माने एक्टिविटी देना चाहूंगा, कि चित्र वाचन करके एक टिप्पणी तैयार कर अगले क्लास में प्रस्तुत करना। क्या तैयार कर सकते हैं?
1: हाँ
0: हाँ
1: जी
0: ठीक है, अब हम इस कविता के कवि के बारे में देखें। कवि का नाम क्या है?
1: स्वप्निल श्रीवास्तव।
0: अच्छा, तो तुम पृष्ठ संख्या 81 ले लो। ठीक
1: ले लिया जी।
0: है, मैं एक बार पढ़ सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना।
1: हाँ जी।
0: स्वप्निल श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954, 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया चाहिए आदि। पुरस्कार, रूस के अंतरराष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से वे पुरस्कृत हैं। देखो, ध्यान से सुना।
1: हाँ
0: हाँ
1: जी।
0: सुना। तो श्रुति, स्वप्निल श्रीवास्तव के बारे में कवि
1: श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान में आदि से वे पुरस्कृत है।
0: अच्छा, ठीक हुआ है। और प्रयाग, तुम भी कवि के बारे में दिया गया परिच्छेद एक बार पढ़ सुनो।
2: स्वप्निल श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों के उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से।

0: पुरस्कृत है।
1: प्रयाग, तुम्हारा वाचन बहुत उत्तम रहा।
0: धन्यवाद।
1: तुम दोनों ने वाचन में बड़े निपुण है।
2: धन्यवाद जी।
1: अब मैं इस परिच्छेद से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। ध्यान से प्रश्न सुनना और ठीक उत्तर देना।
2: ठीक है जी।
1: पहला प्रश्न है, स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग, इसका उत्तर बताओ।
0: स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ।
1: ठीक है। अगला प्रश्न सुधि से है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं?
2: ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
1: ठीक है। और क्या एक प्रश्न तुम बना सकते हो इस परिच्छेद से श्रुति? और एक प्रश्न सुनाओ, उसके पुरस्कार के संबंध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए।
2: भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्र पुष्किन सम्मान आदि सेवे पुरस्कृत है।
1: ये तो उत्तर है। एक प्रश्न बता सकते हो प्रयाग, वे किन किन पुरस्कारों से सम्मानित है? इसका उत्तर है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय मुश्किल सम्मान आदि से वे सम्मानित है, पुरस्कृत है। तो आगे और एक ग्रहकारी भी मैं देना चाहता हूँ। देखो, इस अनुच्छेद से अधिकाधिक प्रश्न और उत्तर तैयार करके लाना, ठीक है ना?
2: हाँ जी।
1: तो और एक बार भी ध्यान से इसका वाचन करना है। मैं वाचन करके सुनाऊं। स्वप्निल श्रीवास्तव, जन्म 5 अक्टूबर 1954। स्वप्निल श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। कहानी और संस्मरण के क्षेत्रों में उनका योगदान है। ईश्वर एक लाठी है, लाख पर दिया सलाई, मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, फिराक पुरस्कार, रूस के अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान आदि से वे पुरस्कृत हैं। ठीक है। इस अनुच्छेद से संबंधित कुछ अधिकाधिक प्रश्न और उत्तर तैयार करके कल के क्लास में प्रस्तुत करना। आज का क्लास यहां समाप्त होता है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
3: ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹിന്ദി പാഠം. പഠിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ ഡി രാജേന്ദ്രബാബു. പഠിച്ചവർ ശ്രുതി, പ്രയാഗ്.
4: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിമാസ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര മൻ കി ബാത് നിങ്ങളുടെ 0117800 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. 1922 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമോ ആപ്പിലോ മൈ GOVയിലോ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 111 ആകാശവാണി ദില്ലി എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് എഴുതാവുന്നതുമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ മാസത്തെ മൻ കി ബാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മെയ് 29 മുൻപായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുക. കേൾക്കുക മൻ കി ബാത് മെയ് 31 തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആകാശവാണിയുടെയും ദൂരദർശന്റെയും എല്ലാ ചാനലുകളിലും പ്രസാർഭാരതിയുടെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം വേവ്സിലും. മൻ കി ബാത്.
5: മൊഴിയുറവുകൾ. മറവിയിലാണ്ടുപോയ ശബ്ദശകലങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ, ഗാനങ്ങൾ, ഓർമ്മകൾ, ആകാശവാണിയുടെ ശബ്ദശേഖരത്തിലെ മൊഴിമുത്തുകൾ കേൾക്കാം. മൊഴിയുറവുകൾ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്. മൊഴിയുറവുകൾ.

0: ആകാശവാണി സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിട്ടും 53 സെക്കൻഡും. ഇനി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് 9 മണിക്ക് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ. ആകാശവാണി സെ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ ലവ്ലീൻ നിഗം. भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत. द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय. आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर. सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी. भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया. भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी. और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी. अब समाचार विस्तार से. भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए. नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर बढ़ाया गया है.
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं. भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी. यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए

0: अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
0: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा

0: है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें

0: बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।